वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Biker Radio. काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: वेक अप फील गुड इट्स डॉनी ब्रास्को ऑन ब्रेकफास्ट
2: लाइका रेडियो.
0: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है.
2: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor starts this Saturday the 19th of September at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: Use your brain now, play the game now.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
6: साउथ हॉल ट्रेवल.
5: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
8: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Kickstart your day the right way with Brasco. On Leica Radio. Trending track of the week.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
2: Budget tight. पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
1: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Oh, hey, I na jag se laaj, main itna zor se naachi aaj.
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
3: लाइका रेडियो
4: वेब बॉलीवुड कम्स फर्स्ट

चलते चलते यही रुक जाता हूँ मैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद प्यार. मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग डाउन एंड वॉकिंग, फिर रुक जाते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करते हैं, फिर एक रील फॉरवर्ड करते हैं, फिर एक स्टोरी डालते हैं. इट्स नॉट प्यार, डिस्ट्रैक्शन. Also, thank you for calling me gorgeous. So many of you calling me gorgeous today. Thank you.

0: बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Royal Chai लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
4: संगीत साधना है. संगीत आत्मा की आवाज.
5: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं.
4: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए.
6: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
7: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 UK आपके अपने जी टीवी HD और जी फाइव ऐप पर.
8: Hi, this is Saleem.
9: Hi, this is Saleem.
10: Hi, this is Suleiman.
11: Hi, this is Suleiman.
12: From Saleem Suleiman. Keep listening to
13: Leica Radio.
14: A Leica Radio classic plays now.

0: पूरा जिंदगी वहाँ सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: हमारी रक्षक है वो।
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.

हट जाओ हट जाओ हट जाओ डिस्को वाले, क्योंकि हमको डिस्को से ज्यादा अपना कल्चर ज्यादा प्यारा है. ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन द नोट ऑफ टॉकिंग अबाउट अपना कल्चर, वी आर इन द लास्ट एंड द फाइनल फ्यू डेज टू गो फॉर द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर आपका अपना लाइका रेडियो.

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11-11, Danube Properties,
1: Danube 11-11. माय फ्रेंड दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है
2: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर स्टार्ट्स दिस सैटरडे द 19th ऑफ सितंबर एट 8 पीएम ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार
3: यूज योर ब्रेन नाउ प्ले द गेम नाउ
4: नॉन स्टॉप थ्रू द नाइट द लव